0: जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना।
1: कई
0: कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बृख निप जाए।
1: कई कोट देश भूमंडल,
0: कई कोट सस्तर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सर छत्र।
1: सगल सामग्री अपने सुतारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस।

जाका दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दे दिस प्रगटावे। जीव पिण सब तिसकी रास, घट घट।

0: कबहु कीट हस्त पतंगो जिया निक जोन परमे परमिया जो तुस पावे सोई होए नानक दूजा वरना कोए अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश
1: सदा बसे पाप के संग
0: ज्यों जल में।

0: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे
1: सहज कटे लख उठता वह त्रिवतन आवे माया पा

0: ऐसा हुए आपे आप आप प्रभ सोए
1: जो किस किनो सो अपने रंग सबते दूर सबु कै संग
0: जे देखे करे विवेक आपे एक आपे है अनेक
1: मरे न बिनसे आवे न जाए नानक सद ही रहया समाए
0: आप उपदेशे समझे आप आपे रचया।

0: अपने चलत आप करने हार, कौतक करे रंग अपार।
1: मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन न जाए।
0: सत सत सत प्रभु।

0: संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन।
1: संत के अते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रच होए।
0: संत कृपाल कृपा जय करे, नानक संत संग।

0: सदा सदा तिसको नमस्कार।
1: प्रभु की उस्तत करहो दिन रात, तिसै त्यावो सास गिरास।
0: सब किछु वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थी।

0: कीमत के नै न पाई।
1: अनक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हृदय सिम रहे।
0: सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने।
1: एहो हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होए।
0: उस पुरख का नाही।

0: जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे।
1: अपने आप आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही पर जा।
0: जय निर्मल।

0: एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुन राक्षस का काटा सीसा श्री असकेत जगत के ईसा
1: पोपन भ्रष्ट ग्रंथे पई सब ज्ञान बधाई दई
0: तन तन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा
1: काल पवन के सज्जन हारे दास जान मोहले हो बारे
0: कबे उपाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ तै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा
1: तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रित पारा
0: हमरे दुष्ट सब है तुम काव हो आप हाथ तै मोहे बचाव हो
1: सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सब कर तारा
0: मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैरन को आस करिए
1: पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा
0: मैं शाड़ कोई अवर न त्याऊं जो पर चाहूं सो तुम ते पाऊं
1: सेवक सिख हमारे तारिए चंचल सत्र हमारे मारिए
0: आप हाथ है मजा अवरिए मरण काल का त्रास नवरिए
1: जो सदा हमारे पच्छा से तुझ करे और अच्छा
0: राख लो मोहे राखन हारे साहिब संत

0: सब जगत बनायो, देवता चक्षण उपजायो।
1: अवतारा सोई गुरु समझो हमारा।
0: नमस्कार तसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी।
1: सबकुन को सब गुण सुख दियो, सतरण को पल मोह बद कियो।
0: कट कट के अंतर की जानत, पल परे की पीर पछाणत।
1: चीटी ते कुन चले सूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।
0: संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी।
1: एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने।
0: जब उत्कर करा कर तारा, प्रजा तर दब दे।

0: सिमट पे शंकर कैठा
1: शिगरी सृष्टि दिखाए चंप व्याज गाच रूप स्वयं पव
0: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग करो
1: दोस्त देव उठवटित पाता सकल मलेश करो रण काता
0: जी अस्तर तब सानी परे तिनके दोष दुख

0: जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत
1: सरग पा सरग बरकरार सर्वी पुरी समेत
0: चौपाई जो है।

रतन सुख बिहावै प्रभु सिमरहत नाथ मजीता प्रभु सिमरहत निर्मल जीता प्रभु कौ सिमरहत आनंद कनीर प्रभु सिमरह बस हर नीर संत कृपा ते आनंद जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु का सिमरन कार्य पूरे प्रभु कै सिमरन कब हो ना चूरे प्रभु का सिमरन हर गुण वाणी प्रभु का सिमरन सहज सुमानी प्रभु का सिमरन निह चलासन प्रभु का सिमरन कमल विकासन प्रभु का सिमरन अनहद चुन कार सुख प्रभु सिमरन का अंतम पार सिमरह सी जन जन को प्रमया नानक तीन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाय हर सिमरन लग भी दे उपाय हर सिमरन पय सीध जति दाति हर सिमरन नीच चह कुंट जाति हर सिमरन धारि सब धरण सिम सिमर हर कारण करना हर सिमरन की ओ सगले आकारा हर सिमरन है निरंकार कर कृपा जसा बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना कट करना थानाथ शरण तुम्हारी आयु नानक की प्रभ साथ अष्टपति जहमात पिता सुत मीत न पाई मनुहा नाम तीरा संग सहाय जह महा पया दूत जम दर दह केवल नाम संग तेरा चल जह उसकर होया तुपारी हर को नाम फिर माहे उदारी अनक पुन है चरण करत नहीं तारा हर को नाम कूड़ पाप पर हर गुरमुख नाम जप मन मेरे नानक पाव सुख नेरे सर्व श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया लाख करोरी बंधन पर हर का नाम जपत ने तारा अनक माया रंग तेख ना बुझावै हर का नाम जपत आगावै जिह मार्ग हो जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला सन नाम सदा तियाई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख वाहि नाम जपत तह पार पराही अनक बिघन जह आय संघार हर का नाम तत्कार उधार अनक जोन जन्मा मर जाव नाम जपत पावे विश्राम हाउ मैला मर कबह न तो हर का नाम कूट पाप खुए सा नाम जप मन रंग नानक पाइय साध का संग जिह मार्ग की गण जह न कोसा हर का नाम वह संग तोसा जिह पैठ महंत गुबारा हर का नाम संग जियारा जह पंथ तेरा को न संजानू हर का नाम तेरा रूप छानू

स्वामी सकल कटा के अंतर जामे अपने गात्मित जान हो आपी आपन संग आयो प्रभु राती ये तुमरी अवस्था तो तुम दे हुए नायन का वरना जान सुखे सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्म है सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत माल हिरिया सगल उद्दम है उद्दम पर हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जा सुन रसन बखानी सगल थान दियो हो तुम था नानक जिह काट वासा हर नाम सलोक निर्गुणी आर ए अने आंसो प्रव सदा समाल जिनकी आ तिह चीत राख नानक निवहीन लाल अष्टपदी और मैया के कुंचित प्राण कौन उदय कौन दृष्टा ने जन तू साज सवार सीगारिया गर्भगन मह जिन है उबारिया बार बस था तो जह प्यारा दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साक्ष अनुमुखा पिया बैठ का उदयन निर्गुण गुण कछु न भूल जाय बक्षरी हो तो नानक सी जाय जिह प्रसाद तारू ऊपर सुख बसा सुत प्रात्मीत बनता संहस जिह प्रसाद पी वह शीतल जला सुखदायी पवन पाव कमला जिह प्रसाद पूग है सब रसा सगल सामग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करना नियतर रसना तिश त्याग और संरचना

सदा हजूरे तक अंधा जान तूरे जाग टहल पावा दर्ग हमार तिसह बसारा मुक्त्या जान सदा सदा हो पुलन हार नानक राखनहार अपार रतन त्या कौड़ी संग रचय साज छोड़ झूठ संग मचा जो छडन सो अस्थिर कर मन जो होवन सो दूर परान छोड़ जाय दुष्का श्राम कराय संग सहाय दह पर हराय चंदन जीप उतारा तुय कर तो प्रीत पसम संग हुए अंत कुमह पद तो विकरा नानका लिहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जाय तू लोक विचारा कर दन राय तू बाहर पीख अंतर मल माया शब स्नाह कश कर छुपाया बाहर ज्ञान त्यान स्नान अंतर व्यापलू स्वान अंतर यगन बहर तन स्वाह कर पाथर कैसी तरया था जाके अंतर बस प्रव्याप नानक तीज सह समाय तू सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर कह लिहु उड़ने बहावे कह बजार तू जा डूरा निस कहिया तो समझ पूरा कह विसन पद गावे गुंग जतन करा तो पी सुर पंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो वह सुगवन कर तार करुणा दीन बेनती करा नानु तुमरी कृपा तर संग सहाय सुहावन चीत जो वैराज दास प्रीत बल वै के गृह पीतर बस आनंद कीन वै रंग रस दृढ़ कर मारना मन प्रतीत काल ने अवै मुड़ी चीत वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह याह जुगत बेहानि के जन्म नानक राखी हो आपन कर कर्म तू ठाकर तुम बहरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम आद पिता हम वर्ग तेरे तुमरी कृपा महसूह कनेरे कोई न जाना तुमरा अंतूचे ते ऊचा भगवंत सकल समागरी तुमरा सूतर तारी तुम ते स्वागकारी उमरी गात में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बन सलोक दीन हर प्रशूट कला ज्ञान सवाय नानक हुना से जाई बिन नावै पात जाय हरिपदी दास वस्तु ले पाछा पावे एक वस्तु कारण भी खोट गवावे एक बिना दे दास भी हेर ले ता मुड़ा कहु कहा करे जय ठाकुर से ना हिचार ताको की जस अदना उसकार जा का मन लागा प्रामी ठा सर्व सुख ता हुमान उठा जय जन अपना कुमन आया सर्व थोक नानक दिन पाया गणत साहू अपनी दीरा कहत पीत भरत आनंद विलास अपनी अमान कश बहर साहू दे अज्ञानी मन रूस करी अपनी प्रतीता भी खोए बहर उसका विश्वास न हुआ जिसकी वस्तु तुस आगा रख प्रभ की आज्ञा माना मात है उसकी चौगन कर निहार नानक साहिब सदा दयाल अनक पैद माया की हीत सरपुरवत जान नियत बिर किशाया सिंह रंग लावे ऊह बिन सह मन पुछतावे जो दीसा सुचाल नार लौट रही हो तहां अंधार बटाऊ सिंह ज्वलावै नेह ताको हाथ नावै की हमन हर के नाम की प्रिय सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन तन कुटंब सुबाया मिथ्या हौ मैं ममता माया मिथ्या राज जोवन तन वार मिथ्या काम क्रोध विकरार मिथ्या रथ हस्ती असब वस्त्र मिथ्या रंग संग माया बीख हस्ता मिथ्या त्रुह मुह अभिमान मिथ्या अब सुपर करत कुमार अस्थिर भगत साधु की शरण नानक जाप जब जीव हर के चरण मिथ्या श्रावण परनंदा सुन मिथ्या हस्त पर दर्व कव हिर है मिथ्या नेत्र पीखत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसन भोजन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार कौता मिथ्या मान पर लो उलवा मिथ्या तान नहीं पर पुकार मिथ्या बास लेत विकार बिन बुझे मिथ्या सब पै सफल दिह नानक हर हर नाम लाई मृत्यु सागत की आर जा साज बिना कह होत सूचा व्यर्थ ना बिना तनंद मुखावत ताक दुर्गंध बिन सिमरन दिन रय नृथ बिहाय मेघ बिना जो खेती जाय गोविंद भजन बिन ब्रथ सब काम जो कृपन की निरारथ तम धन धन तीय जान जिह घाट वस्यो हर नाव नानक तक बर बर जाव रह त्यवर का शवर कुमावत मन प्रीत मुखम गण लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर पीख न काहु पीन अवर उपदेश आप न कर आवत जावत जन्मा मरा जिसके अंतर बसन रंकार जिसकी सीख तरा संसार जो तुम पहने तिन प्रभु जाता नानकुन जन चन प्राता करो बेनती पार ब्रह्म सब जान अपना किया आप मान आप कर बेरा कस दूर जनावत कह बुझावत नेरा उपाव सियान सकल दे रहत सब कह जाने तुम की रहत जह पावे तह लय लड़लाई थान थन तर रह सुमाई सो सेवक जह कृपा करी निमुख निमुख जब नान करी श्लोक काम क्रोध अलो मोह विनस जय हम एव नानक प्रभ शरण आगति कर प्रसाद गुरदेव अष्टपति जह प्रसाद क्षति हमृत खाही तिस ठाकुर को रख मन वाही जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सिमरत परम गद पावे जी प्रसाद बस सुख मंदर तिस तिहाय सदा मन अंदर जी प्रसाद गृह संग सुख बसनाठ पहर सिमरत सरसना
ਉਂਝ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਹਿ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ।

कबहु हुए बह बड़ राजा कबहु पिखर निज का साजा कबहु आप कीर्त में आवे कबहु पला पला कह जो प्रभु राख तिहि रह गुरु प्रसाद नानु साच कह कबहु हुए पंडित करे बखियान कबहु मन तारी लाव ध्यान कबहु तट तीर्थ स्नान कबहु सिद्ध साधक ज्ञान कबहु कीट हस्त पतंग जियान जन परम है परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखाए जो प्रभु पावत मन चावे जो तिह पावे सोई हुए नानक जावन न कोई कबू सा संगति हो पावे स्थान ते बाहर न आवे अंतर हुए ज्ञान प्रकाश हो स्थान करह विनाश मन तन अमृति करंग सदा बस पार बम कर संग जीवन जाल मह चलाय।

गर्व कलेष्पति जिसका अंतर राजपमान सनर्कपाति होत स्वान जो जान में जौवन वंत सोहत विष्टा का जनता उसका कर्म मंत कहावे जन्म वर वह जो न प्रमावित अनुभूम का जो करगमान सो मूर्खान ज्ञान

निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी काट काट सुने श्रवण बखयाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रिय श्लोक संत सरन जुग जन पर सोजन उदरन हार संत की निंदा नानक बहर बहर अवतार अष्टपति संत का दुख नार जगड़ संत का दुख न जमती नहीं छुटे संत का दुख न सुख सब जाय संत का दुख न नरक मह पाए संत का दुख न मात हुई मिली संत का दुख न सोवत हीन संत के हती को रखा न कोई संत का दुख थान प्रस्त हुए संत कृपाल कृपा जी कर नानक संत आनंद गुबीर तारा संत के दुखन ते मुख पावे संतन का दुखन काग जो लवे संतन का दुखन सर्व जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन का दुखन तरसना मा जला संत का दुखन सब को शाला संत का दुखन तेज सब जाय संत का दुखन नीच नीच संत दुखी का था उनको नाह नानक संत पावे ता वही विगत पाही संत का नंदक महाताई संत का नंदक खेन टिकन नाम पाए संत का नंदक महाहतियार संत का नंदक परमेश्वर मारा संत का नंदक राज दीन संत का नंदक दुखी हर दीन संत के नंदक कहो सर्व रोग संत के नंदक कहो सदा बजोग संत के नंदा दुख मह दुख नान संत पावे ता उसका पिय हुए मोख संत का दुखी सदा पवेत संत का दुखी सह का नहीं वेत संत के दुखी का डान लाग संत के दुखी का सब त्याग संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुख सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरा संत के दुख न सुख तेटर संत के दुखी का नाहीं ठाऊ नानक संत पावत नहीं मिलाय संत का दुखी आदि बीच ते टूटा संत का दुखी का काज ना पाचा संत का दुखी का उद्यान फरमाई संत का दुखी उजड़ पाई संत का दुखी अंतर तीर्थ था जो सास बिना मृत की था संत के दुखी की जड़ की छना है अपन बीज आप ही खा ही संत के दुखी का आवरण रख नार नानक संत पावन लय ओभार संत का दुखी ओ बिल लाए जो जल भी हूं मछली तड़ फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यो पाव की तो नहीं त्राप संत का दुखी छुटया केला ज्यो बुआड़ तेरे खेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ती रहत संत का दुखी सदमे थे कहत करत नंद का दुखी पाया नानक जो दिस पावे सुई थे संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी का दरगह मिला सजाय संत का दुखी सदा सहकाई संत का दुखी ना मरे ना जीवाई संत के दुखी की पूजा न आसा संत का दुखी उठ चला नरासा संत का दुख न दृष्टा को जहाँ पावे तैसा कोई हुए पया गलत न मेटा कोई नानक जाना सचा सुय सब कर दस के करने आर सदा सदा दस का नमस्कार प्राप्त की उस्ताद करो दिन रात सिहत आव सास ग्रास सब काश वार्ता दस का किया जैसा करे तह को थी अपना खिलाव करने आर दूसर कौन का है विचार जिसन कृपा करे तो सब नाम दी बुढ़ पागी नानक जान सी श्लोक तजह से अनुसर जन सिमरहु हर हर आई का सहर मन रखो नानक दुख परम पाव जय अष्टपति मानुख की टीक वृथि सब जान दीवन कई का भगवान जिसका दिया रहे आग हाय बहना तरसना ला गया आयु मार रखे कुआ मानुख कह किस नाही हाथ तुका कंबूज सुफे तिसका नावरा कंठ पुरो सिमर सिमर सिमर प्राप्त हुए नानक बेगन ना लागा कोई वस्तु मान महकार निरंकार कर मान वीर सात ब्याह हर निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर लीह जियो नैन पीक ठाकुर का रंग सा संग बिन सा सब संग चरण चलम वार गोविंद मिटिह पार जपी हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगा नानक पूजन मथा बड़ भागी ते जान जग माही सदा सदा हर के गुण गाही राम नाम

साधु को अपना जीव साधु की तूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान साधु शिवा विड़ पाकी पाई असंग हर कीर्तन गाइया अनक विघंत साधु राख हर गुण गाय अमृत रह चाख ओट गही संत दराय सब सुख नानक तिह पाय अमृत कहो जीवल नार पूखे को देवत आधार सर्वन धान जा दृष्टि माही पर।

ठाकुर का सेवक सदा पूजारी, ठाकुर के सेवक का मन प्रति, ठाकुर के सेवक निर्मल री, ठाकुर का सेवक जान सांग, प्रभु का सेवक नाम का रंग, सेवक को प्रपाल नारा, सेवक की राखन रंग पारा, सो सेवक जह दया प्रभु तार नानक, सो सेवक सा सा सुमारा, अपने जन का परता टाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दाख देव बढ़ाई, अपने सेवक का नाम जपाई, अपने सेवक की आ पात राखे, ताकि गाति में जता को या ना लाख, प्रभु के सेवक का को ना पा ऊंचा, प्रभु से ऊंचते ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दह प्रगटाया, निकी कीरी महकाल राख, पसम कर लस्कर कूड़ा खज कसा।

जब पूर्ण करता प्रवस हुए तब जम की प्रास कहु किस हुए जब अवगत अगोचर प्रविका तब चित्रगुप्त किस पूछत लिख जमनाथ निरंजन गोचरा गति तब कौन छुट्टे कौन बंधन।

कर्तव्य जाने आप अंतर्जम रहे व्याप प्रात पाले जीवन बापात जो जो रचियो सोते सहते आद जह पावत हलई मलाई भगत कर ही हर की गुण गाय माने अंतर विश्वास कर मानिया करण आर नानक के जाने आ जान लागा हरि का नाय तुसकी आस न वृथि जाय सेवकाओ सेवा बनाय हुकुम बूझ परम पद पाई हिते ऊपर नहीं विचार जा कमन बसे निरंकार बंधन दूर पै निर्वैर आनंद पूजह गुरु की पैर लोक सुखी परलोक सुहेली नानक हर प्रव्याप मेरे साथ संग मिल करो आनंद गुण गाव प्रभु परमानंद राम नाम तात करह विचार दुर्लभ देह का करो धार अमृत भजन कवन गा उपरांत स्वाठ पैर प्रापी खाव नेरा मिटा ज्ञान विंस अंधेरा सोने उपदेश हृदय साव मनुष्य नानक फल पाव हरत पलत दुई दिहु स्वैर राम नाम अंतर वरतार पूरे गुर की पूरी दीखिया जह मन बासा दसाज प्रीखिया मन धन नाम जपो ले बलाई दुख दर्द मन दी पाओ जाय सच वापार करहु वापार दर्गन वह की बदमारी काटे रखो मन बाही

पार बांतन पर्वत पार ब्रह्म जैसी आज्ञा दस कर्म पवन पाणि व संतर माही चार कुंट दह दिश समाह नहीं कोठा गुरु प्रसाद नानक सुख पाऊ वेद प्राण समृत मदीख शशि अर सूर नख अतरम एक बाणी प्रभु सबको बोलया व डोल न कम डोल सर्व।

दूसरे न सोजी पाई। तिसका किया सब प्रवानन गुरु प्रसाद नानकी हो जान जो जान तिस सदा सुहुए आप मिलाई लय प्रसोयो हुत अनवंत कुलवंत पातवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान।

दयालु दुख भंजन पूर्ण कृपालु सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी अकाई आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल रतन।

सर्वेच्छा ताकि पूर्ण प्रदान पुरुष प्रागट सावलूय सवत ऊच पाय स्थान वाहन होयावन जान आरतान खाट चला जान सोय नानक जिस प्राप्त हिम शांत रेत नाम रेत बुद्ध ज्ञान सर्वतान स्थित विद्या ताप जोग प्राप्ति आन ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबका मध्य सकल देवता सुंदर चतुर तत्कविता समदर्शी एक दृष्टि तय फाल तेह जान का मुख पने गुरु नानक नाम भजन मन सुने ये होने दान जप मन कुई सब जुग में तागी गात हुए गुण गोविंद नाम तुन वाणी सिमर शास्त्र वीत बखाणी सकल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साधु संग मिटाय संत कृपा ते जम दी छुटाय

है जुगाद है अजय है अभय है भूत है धूत है नाश है दास है धंद है बंध है भक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है निश्चिंत है सुनिंत है लिख है दिख है लीख है भेख है ढा है गा है सम है गम है अनिल है अनाद है अनित है सो नित है अजात है अजाद है चर प्रशांत है प्रसाद सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जूता सर्वं मुक्तार सावल सांत्वा प्रसाद नमो नरकनाशे सदावं प्रकाशे नंगं स्वरूपे भंगं विभूते परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाथे गा स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं श्री का मित्तो मी कै सदावं प्रभा है अजय है अजा है भगवती संत है प्रसाद की जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहब दिमाग है कि उसनल चराग है कि कामल करीम है कि राज करहीम है कि रोजी दहान है कि राज कर हिंद है करीमुल कमाल है कि उसनल जमाल है गनीमुल राज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हरासुल फिकन है कलंकं प्रनास है समस्तल निवास है गंजल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है कि साहब करा है कि नरकं प्रनास है बहिस्तुल निवास है कि सर्वुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परमीश है समस्तुल अदीस है देसुल लेख है मेसुल भेख है जमीनुल जमा है मिकुल माह है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मित्तो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि मित्तो विभूत है कि मित्तो उपसाह है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अलांग है कि मित्तो भंग है मदभास संत है प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मदाम यार बार गंज हर नर प्रभंजन गण प्रणाम मन सलाम हर नार खन बर नारे मानन भवन आसमन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम छिंज अंग आसन भंग उपमा पार गत मितोदार जल थल मन दिस विस भन जल थल महंत दिस विस बेअंत अन भवन आस तिरत धरत रास जान बाहो इकै सदाहो ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबार काल घर घर प्रणाम चित चरण नाम छिज गात जिजना बातन झंझ गातन रंज बातन टुट भंडारन ठट पार आठ धर्म अत ठीठ कर मन वर्ण अंत दाता महंत हर बोल मला छंतै प्रसाद करनाल्या हर कालै है खल खंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है काल कारण है सर्व भारण है त्रित के धर्म है जग के करण है मन मान है जग जान है सर्वं भर है सर्वं कर है सर्वपास है सर्वनाश है करनाकर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंडस है कालखंडस है पर ते पर है करनाकर है जपा जापै थपा थपै कृता कृत्या अमृता अमृत है अमृता अमृत है करनाकृत्या कृता कृत है धरनी कृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है काल कायक है विश्वंपर है करनाल्य है निरपनायक है सर्वपायक है भव भंजन है अर्गंजन है रिप तापन है जप जापन है कलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्मवास है जासके जास है भुजंग प्रजा छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रास संताम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके भंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी कामे एक अचरी छंद अजय अलै अपै अभय अबू अजू अनास अकाश अगंज अभंज अलख अपक अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगाह अटाहा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग भरमंग गंजे लेखे भुजंग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे गंजुल अनामे समस्तुल निवासेन्द्र काम विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते

भगवंत तुमरी गत मित तुम ही जानी। बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब जाए। तेग बहादुर सिमरिया करुण दयावै ताए। सब ताई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई होए सहाय। दसां पातशाहां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान धरके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया। देख जलाई देख वाही देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेर सीख दिते बंद बंद कटवाए। खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए। सिखी सिदक